0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: भी सुन रही है कि ये वायदा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रत भी सदा उसको

भगवान की दृष्टि से देखो, हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक पापा का बच्चा है। पापा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा ब्राह्मण जीवन किटराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान अवश्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में नहीं आओ। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं आओ। मेरा बाबा
जो होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगा दिए ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते, तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वारत अवनाशी सने

Chết.

яд кардеме. Седь юм.

साक्षात ये परमात्म सने सदा सर्व प्राप्तियों का फल अनुभव कराता सने में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन सने नहीं है तो फिर भी क्यों क्या का क्वेश्चन उठ सकते लेकिन सने सागर में लौट ली।

मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी सने सारा कलप सने बना दे।

0: Raibana never lived. Kyo kisane me praptya sapasht anbhavati. Arjya
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चिकी

Merci.

saturnes.

Se

Sa

Peace.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है। खुशी में नाचने की और अपने भाग्य सोच विचार करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

y bananas.

Bitch.

La

0: तो मेरा बाबा को आदत से मजबूर होती है ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे ना तो मेरा बाबा के खत्म कर दो, अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को
3: Jet.

0: sano kaccia makata. Abisaritenme. Beach me ye. Apna chaat ji karo. Sarvakasane chama kitne ki chama ka khata nikalo pota mel nikal ek minute mein संकल्प चलते हैं, फास्ट गति है न संकल्प की, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रे आप ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प हर सेकंड हर श्वास जो पीते वो वाह वाह वाह नहीं वाह वाह अभी कोई समय वाह वाह होता है कोई समय वाह की बजाय वाह हो जाता है कोई समय बिंदी लगाती कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती आप सबका मन भी कहे वाह और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो चाहे ब्राह्मणों चाहे सेवा करने वालों के वाह वाह शब्द निकले
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाता है। इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो सम्मान और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वन पुरुषार्थ
2: सेवा की।

0: जीवन की अनुभूति करने की, जहां मेहनत है या कभी कभी कहते हो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या, जिस भी समय आपको अनुभव होगा कि जब अनुभव के सीट पर सेट होते हो किसी भी वरदान के स्वरूप में, अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत करनी होती है। नेचुरल अनुभूति होती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Heart.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने हैं

0: सबको सफल करना है। सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सफलता मुहूर्त बनो, सब सफल करो। डबल लाइट बनना है ना तो सफल कर लो। संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार, आत्मा के, उसको इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो। आदि अनादि संस्कार
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मेजॉरिटी बच्चों का फर्श का पोता मेल देखा, क्या देखा समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी है, उल्टा देखना सुनना सोचना बीता हुआ भी मिटाते हैं, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस दूसरा है सब कॉन्शियस, मिटाते हैं लेकिन मन के प्लेट को स्लेट को कागज को समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता, इसलिए जो चार शब्द बाप दादा ने सुनाया वो सदा नहीं चलते। अगर मानो बिल्कुल लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल साफ है, फिरत से और पीती से सबसे सूखी रूप है, वेब्रेशन के रूप में रह जाते
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना, कमजोर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्यवन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं, अगर

सारे लाइफ में हद का मेरा पन, हद का मैं पन से न्यारी। रही है उसकी रिजल्ट, बीमारी कितनी भी है निशानी देख रहे। तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निर्स्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? Yeah.

0: Сила мака се. Отца се. Ортечало. Папко апменеще.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

याद करने वाले बच्चे। वाह, बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

night.

anything. Some give Kushiki Jala Sapasht Dikai Deri Paap Bhi Dil Mein Yehi Geet Gaane और बाप भी यही हर एक के चेहरे से देख रहा है और दिल से कह रहे हैं जो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे ही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा पापा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा पापा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा पापा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना, दिल से कोई भी मुश्किल बात आए से मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल की है, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक या अंधकार हो जाता है, अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएंगे। तो आप भी ये गलती करते हो, किसी

0: बहुत सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अब सेट नहीं होंगे। बिना सीट के अब सेट होते सीट है तो अब सेट नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बस एक

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साधारण बोल अभी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा पूछते हैं, वो तो देख लिया बरकर देखा खेल, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सर्व

Florida.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे कभी कभी नहीं भी करते हैं।

क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा संकल्प करने जाओ, वो बंधा हुआ है क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस

बच्चों

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

Peace.

Fred's son.

我叫个叫电视没停电呢，都数着电，阿比阿比，伊斯巴杰卡，佛陀尼卡。Jenga.

कुछ पर्पस जो आत्माएं सरकमस्टेंस के बार-बार बहुत टेंशन में रहते हैं। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उनों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश कर

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते हैं।

Shake a rats.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक खाना नहीं करो इसकी, अपने

¿Y por qué?

Listen.

tiene un olor. Mira todo vacío.

Ha ha ha!

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही, तो पेपर कहाँ तो चलेगा, सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान। जैसी शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओमंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ, और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होंगे, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। के पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट। रोटी भी नहीं मिले तो भी

0: iarbă, cu șimina isterii, sicuri chedie, miroa mahot valungășc.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जी

0: पैसा एक दिन मिल जाए तो अच्छा।
1: Yeah.

जो वर्णन करते हो फरिश्ता अर्थात नदी अपमान नदी मान न बिना

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना,

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा

सभी को मुक्त

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत री जाते, गलती करते हैं ना। फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया के सागर हो ना, बाप को भी याद कराते हैं तो आप कौन हो। आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन मैं सुस्ता से सुना के खत्म। एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते। आप ही चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Oh.

0: Meow, sick of me.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की, विल पावर। तो परमात्मा विल पावर की आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच के बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों कैसा ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है। लेकिन जब सामने जाते तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी कुछ को नहीं, अभी सेवा में सकाश दे को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहाँ भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। तो बाबा भी बंदा हुआ, सिर्फ दिल से कहना।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने मास्टर।

तीनों लोकों में
Yes.

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस

0: ใจมันสะใจวาจาใจกรุณาใจสมันสัมปรักเมย์เฟบลีไลฟ์วาโลอันเนวาลาสตูดันต์นี่नेचर वालों फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझकर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, परिचय तो बनती जाएगी साधारण परिचय, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बनो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। सिर्फ निमित्त भाव आ जाए हर समय सभी गुण सहज आ सकते, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। माँ बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते। सब सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बढ़ाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों के फटाफट कर रहे हैं। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है ये, हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना का। सेकंड भी निकालो, अभी साधन पर हाथ है, और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो। बिजी, बहुत बिजी। शिकल भी बिजी कर देती है। बाप दादा मानते नहीं है, जो चाहे वो कर सक। अटेंशन कम है, जैसे वो अटेंशन रखते हो ना, 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है, इसीलिए बिजी होते हो ना टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो, 10 मिनट में ये काम करना है, वो भी तो बनाते हो ना टाइम टेबल। इसमें 1-2 मिनट पहले से ऐड कर दो, 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं, 8 मिनट लगना है। तो 2 मिनट साधना में लगो, ये हो सकता है, हो सकता है। इससे पूछते हैं गायत्री से, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी, बहुत बिजी। बाप दादा चेहरा भी देखते हैं, उस समय फोटो निकालने वाला होता है। कितना भी बिजी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। उठी भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है, और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वो दूर हो जाए, खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं हो। काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं कि काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो, होता है ना ऐसे। एक्शन कॉन्शियस की मार तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क और एक्शन कॉन्शियस की मार्क में अंतर तो होगा ना कि नहीं होगा, होता है, फर्क होता है। हाँ, तो अभी बैलेंस लिंक को नहीं तोड़ो, नहीं जोड़ते रहो। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस जितना समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो, निकालो जरूर। हो सकता है पांडा, हो सकता है टीचर्स, हो सकते हैं और जो ऑफिस में काम करती है वो, हो सकते हैं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Chari Swa.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। Puppy.

ऐसा तख्त तो कहां भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र ने

रचना इस फिरके के जड़ में बैठी हुई।

See.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है। तो इसरा बाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली हाथ काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो। बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लाऊंगी, ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो। वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके दिखा।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि आप निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करा बना पाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करा बना करा रहा है। ये स्मृति सदा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे, एक
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है God is truth। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। Sleep।

सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना।

0: 深情，归纳归宿间，三个拉布马特，刷班马特，归，十家一个门，加十家耶。सच्चाई बहुत प्रिय।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब बाप दादा भी समझते हैं। एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों के, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये आशय है दृष्टि लेना बाबा से, समर्पित वालों की ये आशय है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? पालना। कई सेंटर्स सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट बढ़ते नहीं है। और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे, क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों के निमित्त पर निस्वार्थ विश्व सेवा को देख सबसे ज्यादा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो सकते। जब साइंस के साधन

0: उसके आगे ये रॉकेट गया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है अपने मन की वृत्ति क्योंकि किसी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ थे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चों का बाप दादा मानक के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमटेंस अनुसार
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

happy.

not

che ci trome. Sada. Da beltage. Tua por me. Che i raggi

0: che se bio shit guys up shit lekin mat sada befe sabi pepero lekin pepar aur atma fi bana ke aage badhne wala
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। पुरुषार्थ के प्रारब्ध का अनुभव अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की तीवर पुरुषार्थ सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देवता देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ, मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले ये करे, ये दातापन की निशानी नहीं। कोई करे न

0: टेंशन जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Peace.

inside. Dusra na koi. Isse ekagar. Sim.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी कोई ना कोई तो सब

0: खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ये होमवर्क देते चेता कि ये तो मास एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत का अपने प्रत विधि बनावे। इन दो मास में हरेक अपना चार्ट रखे, व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए

मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी, कहा हुआ भी है मन जीत जगत जीत। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट

0: मन खुश। तो मन की खुशी बांटेंगे, ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का टेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त, और समरथ संकल्प समरथ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक वाणी, दूसरा स्व, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर पल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर देने का दिवस आ जाता है।

Matías Rabo.

बच्चों

Yeah.

Suddenly.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय परमान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे इस

0: स्वभावके स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मांड जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड होना, कंबाइंड होना क्या अकेले हो, कंबाइंड हो सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है। ये नशा रहता है ना, कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, नहीं ना समझते हैं कभी कभी।

0: Abrázate. Or Avanashi. Sat neva neva.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा।

0: 起什么吧我这不拿而打的不起来
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट

ちゃん。

saat

0: अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता फिर संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल संकल्प फैलते इसलिए आप प्यारा बन पाप का प्यारा बन उस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर, सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब आप

स्थिति पाप समान कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देंगे। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज थकावट नहीं होगी। जैसे

So

0: us our attention chalte firte karam karte beech beech mein karte jana to ye practice mansa seva karne mein bhi सहयोग देंगे और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है, करेंगे। तैयार है? हाथ उठाओ। कुछ भी पेपर आवे, लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी है। पीछे वाले पके हैं ना, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख वा सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही, इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पका रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग तो उससे वर्क दे दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मत दे बच्चे

este neka. Do fjerat sankalap.

0: शांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सके। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

это Анбави Сваровка. Артие. Isso.

टीचर दिखाई देंगे। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना आवश्यकता का अटेंशन।

tonight.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sí.

Oh, shit.

some

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा, कोई कोई थे क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप। कुछ कमी दिखाई दी, पुरुषार्थ करते हैं बाप दादा ने, फिर भी मुबारक दी जो पुरुषार्थ ऐसा

This.

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।